गीत मेरे होठों को दे गया कोई, कभी अजनबी थे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाज अमित कुमार की।

0: महाशिक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए

विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार। निक्षय

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे राफली। दोस्तों, कहते हैं जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ लगाया, उसने सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक बेहतर कल लगाया है। नमस्कार। वन महोत्सव जो है हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है साल 1950 में हुई थी और इसका एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और लोगों को फॉरेस्ट्स और एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझाना। कहते हैं इस फेस्टिवल को पहली बार लॉन्च किया था इन 1950 बाय के एम मुंशी, देन यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड, जिसे कि इनकरेज किया जा सकता था लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, या इस बारे में लोगों को बताया जाता था कि कितना इम्पोर्टेंट है ट्रीज़ का, फॉरेस्ट का रहना हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने में। अब सोचिए, 76 इयर्स के बाद भी इस फेस्टिवल की ज़रूरत कम नहीं हुई है बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और आज हम सब देख रहे हैं गर्मी हर साल बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है और रेनफॉल का पैटर्न बदल रहा है, हम वो अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, है ना। और कंक्रीट जंगल जंगल जो है असली जंगलों की जगह लेते जा रहा है, तो इन सब की वजह से और भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम और प्लांट्स जो है उसे प्लांट करें। कभी किसी पेड़ के नीचे अगर हमने बैठकर रो महसूस किया हो, कितनी अच्छा महसूस होता है, वो ठंडी हवा मिलती है, कितना सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वो पेड़ कभी बिल नहीं भेजता, मतलब ना ऑक्सीजन का, ना शेड का, ना फ्रूट्स का, बस देते ही रहता है। और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि नेचर गिव्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न।

वेल दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया होगा कि वन महोत्सव जो है हमेशा जुलाई के फर्स्ट वीक में ही सेलिब्रेट किया जाता है। रीज़न भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मॉनसून बारिश का सीज़न नए पौधों के लिए बेस्ट होता है, तो उनकी रूट्स जल्दी जो है स्ट्रांग होती हैं और उनके सर्वाइव करने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर पूरे साल में एक परफेक्ट टाइम है ट्री प्लांटेशन का, तो वो अभी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा गार्डन हो, बालकनी है, टेरेस है, या एक गमला है, या कॉलोनी का कोई कॉर्नर, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर पौधा लगाना पॉसिबल नहीं, तो एक किसी एग्जिस्टिंग ट्री की ही केयर कीजिए, या उसे पानी दीजिए, उसके आसपास जो है सफाई रखिए, क्योंकि पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे बड़ा बनाना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक. हम बात कर रहे थे इससे पहले वन महोत्सव के बारे में कि कैसे ये साल 1950 में शुरू हुआ था तब के यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड के मुंशी जी द्वारा, जिससे कि इनकरेज किया जा सके लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन और अवेयरनेस बढ़ाया जाए फॉरेस्ट को मेंटेन करने में, जिससे कि हमारी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस वो बना रहता है. तो एक लाइन है जो मैंने पढ़ा है कि वो कहता है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो, द सेकेंड टाइम इज टुडे. तो अगर अब तक नहीं लगाया आपने, कोई बात नहीं, आज से शुरू कीजिए. एक पेड़, एक फैमिली, एक सिटी और धीरे धीरे एक ग्रीनर इंडिया. इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अब वक्त है एक और खूबसूरत गाने का, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़ के, क्योंकि गुड म्यूजिक और गुड वाइब्स जो है अभी कंटिन्यू रहेगा आपके साथ. तो बनी रहेगा ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 10:55:22. 11:00 आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके बाद नमस्ते हेलो आदाब फिर से वापस हाजिर हो जाएगा. तो स्टे ट्यून्ड.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विथ मी आर जी रवली। वेल्स जो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:03:50। तो अब हमारे शो में जो है हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैशन ट्रेंड के बारे में जो सिंपल भी है, स्टाइलिश भी और सरप्राइजिंगली पावरफुल भी। तो हम बात करेंगे द रेड थियोरी के बारे में। तो ये अनएक्सपेक्टेड सा रेड थियोरी है क्या, और ये इजीएस्ट फैशन ट्रेंड है जिससे कि हम आप हमारे डेली आउटफिट्स को थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं, राइट? और हम सब जानते हैं कि कलर्स जो है हमारे मूड और पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कलर ऐसा है जो किसी भी लुक या स्पेस को इंस्टेंटली जो है एलिवेट कर सकता है? एंड दैट्स द पावर ऑफ रेड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वॉट इज़ दिस अनएक्सपेक्टेड रेड थियोरी एंड हाउ दैट इट गोज यू नो विद एवरी कलर और यू नो लाइक विद एवरी लुक एंड इंस्टेंटली एलिवेट्स द होल पर्सोना और द लुक एंड दैट कलर इज रेड। सो वील टॉक अबाउट इट, द पावर ऑफ रेड के बारे में हम बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ट्रैक, सो स्टे ट्यून्ड।

शेड्स हैं, आप उस रूम में एक ब्राइट रेड कलर लैम्प या आर्ट वर्क अगर आप ऐड कर देते हो तो सडनली पूरा रूम जो है एकदम ऐसे ब्राइट और जिंदा जैसे लगने लगता है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेड नेचुरली अटेंशन को ग्रैब करता है, और ये एनर्जी जो है पैशन और कॉन्फिडेंस का कलर माना जाता है। इसीलिए जब रेड किसी ऐसी जगह नज़र आता है जहाँ लोग उसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब ये थियरी इंटीरियर डिज़ाइन में इतनी सक्सेसफुल रही तो फैशन वर्ल्ड ने भी सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो हम बात करेंगे इस अगले गाने के बाद दैट हाउ टू इनकॉर्पोरेट द रेड थियरी इन फैशन। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विथ मी आरजे रफली, और हम बात कर रहे हैं रेड थियोरी के बारे में या रेड कलर के बारे में. तो रेड कलर की पावर पर फैशन और डिज़ाइन एक्सपर्ट्स काफ़ी सालों से रिसर्च करते आ रहे हैं, और कुछ साल पहले इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसे कहा गया द रेड थियोरी. अब थियोरी ये कहती है कि अगर आप किसी न्यूट्रल या सिंपल स्पेस में एक अनएक्सपेक्टेड पॉप ऑफ रेड ऐड कर दें तो पूरा रूम जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव और विजुअली अपीलिंग लगने लगता है. मतलब सोचिए एक रूम जिसमें मोस्टली वाइट, बीज या ग्रे

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विद मी आरजी रवली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं द अनएक्सपेक्टेड रेड थ्योरी के बारे में। तो हमने बात किया कि कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में रेड काम करता है और कैसे फैशन एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि रेड को एक अलग लेवल पे ले गए हैं, एंड हाउ कि मतलब रेड का मतलब ये नहीं कि हम पूरा आउटफिट या पूरी तरह से रेड में लिपट जाए, बट एक छोटा सा पॉप अप टच भी उस आउटफिट को काफ़ी नया और अट्रैक्टिव बना सकता है। तो अगर हम बात करें कि इस रेड थियोरी को फैशन में या हमारे अपने एवरीडे लाइफ में कैसे एस कर सकते हैं या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो गुड न्यूज़ ये है दैट इट्स इनक्रेडिबली ईजी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब क्लासिक रेड लिपस्टिक ट्राई कीजिए या एक रेड हैंडबैग आप कैरी कर सकते हो, या इवन इफ़ यू वांट ऐड अ स्टाइलिश रेड स्कार्फ या एक रेड शॉप एक रेड टी शर्ट या एक रेड शर्ट जो है आप

0: ऐड कर सकते हैं न्यू आउटफिट या सिर्फ एक रेड कलर की बेल्ट जो आपके सिंपल आउटफिट को इंस्टेंटली एलिवेट कर दे, या इवन अ रेड फोन केस भी सरप्राइजिंगली इफेक्टिव हो सकता है. रिमेंबर, क्योंकि हमारा गोल है कि हमारा गोल ये नहीं है कि हम रेड ही रेड नज़र आए, राइट? गोल है कि एक सटल सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करना, ऐसा एलिमेंट जो लोगों की नज़र नेचुरली अट्रैक्ट करे और आपके ओवरऑल लुक को एकदम मेमोरेबल बना दे. अगर आपको मिनिमलिस्टिक फैशन काफ़ी पसंद करते हो तो आप रेड को न्यूट्रल कलर के साथ पेयर कर सकते हो, जैसे वाइट एंड रेड हो गया, या ब्लैक एंड रेड, ग्रे और रेड कॉम्बिनेशन, और बीज और रेड भी काफ़ी अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, एंड ऑल्सो नेवी ब्लू एंड रेड. सो ये सारी कॉम्बिनेशंस जो है ये क्लासी भी लगते हैं और सोफिस्टिकेटेड भी. एंड इफ़ यू आर सम ऑफ द पीपल हु प्रिफर मिनिमलिस्टिक फैशन, देन यू कैन गो फॉर दिस कलर पैलेट इज वेल. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9.
1: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.

वेल, इस गाने से पहले हम बात कर रहे हैं द रेट थियोरी के बारे में कि कैसे अगर मिनिमलिस्टिक हो या आप बिगिनर्स हो तो कैसे आप इस कलर को ऐड कर सकते हो आपके आउटफिट में विद जस्ट अ सिंपल यू नो रेड टॉप और रेड शर्ट, या आप एक रेड स्कार्फ ऐड कर सकते हो या इवन अ रेड बेल्ट दैट विल एलिवेट योर आउटफिट। और मिनिमलिस्टिक फैशन पसंद करने वाले लोग जो है रेड को न्यूट्रल कलर के साथ पेयर कर सकते हैं, दैट गोज अ कॉम्बिनेशन गोज क्लासी एंड ऑल्सो मेक्स इट लुक सोफिस्टिकेटेड। और अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटल मूड में रहते हैं तो रेड प्रिंट्स, स्टेटमेंट ज्वेलरी, लेयर्ड एक्सेसरीज या बोल्ड फुटवेयर के थ्रू भी इस ट्रेंड को ट्राई कर सकते हैं। फैशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कभी कभी कॉन्फिडेंस किसी एक्सपेंसिव आउटफिट से नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्टाइलिंग चॉइस से आता है, और रेड थियोरी एग्जैक्टली वही करता है। एक स्मॉल डिटेल, एक स्मॉल कलर एक्सेंट और पूरा लुक जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपना वार्डरोब ओपन करें और सोचें कि आज क्या पहना जाए तो एक छोटा सा टच ऑफ रेड ज़रूर कंसीडर कीजिए, बिकॉज समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज वन बोल्ड कलर टू मेक एन अनफॉरगेटेबल इम्प्रेशन। और ये था आज का स्टाइल स्पॉटलाइट, मतलब स्टे फैशनेबल, स्टे कॉन्फिडेंट, और याद रखिए फैशन इज नॉट अबाउट ऑलवेज वेयरिंग मोर, समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट एडिंग दैट वन परफेक्ट डिटेल।

वल दोस्तों, हम इस गाने से पहले बात कर रहे हैं कि कैसे बदलते मौसम में अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। तो विद द हेल्प ऑफ सुपर फूड्स जो हमारे घर पे ही अवेलेबल है, उससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घर की सबसे ट्रस्टेड इम्यूनिटी बूस्टर तुलसी में। इस चीज तुलसी में जो है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसमें एक नेचुरल ऑयल होता है यूजिनॉल, जो रेनी सीजन में होने वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो बस सुबह तुलसी इन्फ्यूज्ड वाटर ट्राई कीजिए, या तुलसी के फ्रेश पत्तों को अपनी मील्स में ऐड कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगला सुपर फूड है जिंजर, यानी कि हमारी अदरक। मतलब कोल्ड हो, फ्लू हो, या सोर थ्रोट, अदरक अदरक जो है ऑलमोस्ट हर घर का फेवरेट रेमेडी है, राइट? ये इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और बॉडी को नेचुरली स्ट्रांग बनाता है। मतलब एक गर्म कप अदरक वाली चाय या फिर वेजिटेबल्स में थोड़ा सा फ्रेश जिंजर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है।

वेल, तो बात चल रही है सुपर फूड्स के बारे में, स्पेशली इन मॉनसून सीजन। तो अगला हमारा जो सुपर फूड है वो है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। छोटी सी दिखती है लेकिन काम बड़ा करती है। मतलब इसमें होता है पेपरीन, जो एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अब्सर्व करने में भी हेल्प करती है। तो सूप हो या सब्जी, थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर स्प्रिंकल करिए। और हाँ, अब बात है करी लीव्स को, सिर्फ तड़के तक ही मत रखिएगा इस मौसम में, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का पावर हाउस है। इनमें मौजूद जो कैरोटीनॉइड्स है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दाल हो, कढ़ाई हो या सूप, करी लीव्स को तड़का और हेल्थ और टेस्ट दोनों बढ़ा देता है। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारा सुपर फूड है वो है लेमन, यानी कि नींबू, मतलब वाइटामिन सी का पावर हाउस। ये वाइट ब्लड

सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में बॉडी की हेल्प करते हैं। सो टी हो, सलाद हो, या दाल हो, या फ्रेश लेमनेड, थोड़ा सा नींबू रोज़ की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हेल्दी रहना इतना भी मुश्किल नहीं लगता है, बस अपनी डेली प्लेट में ये छोटे छोटे सुपर फूड्स को हम ऐड कर सकते हैं और चेंजिंग वेदर को कॉन्फिडेंस ही बोल सकते हैं, लाइक ब्रिंग इट ऑन, राइट? इस मौसम में भी हम हेल्दी रह सकते हैं, वी कैन स्टे हैप्पी, एंड और गानों को और हमारे साथ इस सफ़र को आप इंजॉय कर सकते हो। तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:59:20। सबसे कुछ ही देर में 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश एट 12:05 PM और उसके बाद नमस्ते हेलो आदाब एक बार हाजिर हो जाएगा 12:10 में। सो स्टे ट्यून्ड विद आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है।

0: काराकास में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council Monitoring Team report of the 29th of July 2025, mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Vikasit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and next-generation technologies. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. While the Indian Embassy in Venezuela has said that India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. The Department of Youth Affairs today organized an industry association conclave of My Bharat in New Delhi. Leading industry bodies including ASSOCHAM, FICCI, CAIT and CII participated in the conclave. The event aimed to introduce the My Bharat ecosystem to industry stakeholders and invite industry

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। वेल, स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:12 और 12 सेकेंड। इंटरेस्टिंग टाइम है ना, इजंट इट? तो फिलहाल जब हम इस सफ़र को शुरुआत करते हैं एक ट्रैवल सेगमेंट के साथ, राइट, हमने इस हमारे शो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानी हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड की क्या नए ट्रैवल ट्रेंड्स हैं, हाउ पीपल आर सीकिंग ट्रैवलिंग नाउडेज, ये सब हमने हमारी शो में बात किया है। और हर समय कुछ ना कुछ एक नया चीज़ हमें सीखने को मिलता है या जानने को मिलता है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, राइट। तो हम जो अब बात करने वाले हैं, जहाँ पे सफ़र के बारे में हमने बात किया है, तो आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जिसका नाम है वाई वेकेशन। मतलब ये ट्रैवल ट्रेंड जो है पर्पस को पहले रख रहा है, एंड व्हाट इज़ वाई वेकेशंस। और क्योंकि जहाँ पे ट्रैवल जो है सिर्फ जगह नहीं बट एक फीलिंग बन चुकी है अल्टीमेटली, तो ये टॉपिक भी हमारा इंटरेस्टिंग ही है। क्योंकि जहाँ बातें होती है सफ़रों की, या सिर्फ मैप्स पर ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं दिल के अंदर भी एक जर्नी स्टार्ट हमारा हो ही जाता है ना, कि अगर हम इस जगह जा रहे हों तो क्या करना चाहिए, कैसे हम इस पूरे वेकेशन को या ट्रैवल जर्नी को कैसे मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो

ट्रेंड आया है वाई वेकेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ट्रैवलिंग का स्टाइल जैसे हम देख रहे हैं बदलती आ रहा है। हर कुछ महीने हम एक नया ट्रैवल ट्रेंड देखने को हमें मिल रहा है ना। पहले हम सोचा करते थे कि छुट्टी मिली है तो कहीं घूमने चलते हैं, बस डेस्टिनेशन हम डिसाइड कर लेते थे, टिकट्स बुक करो एंड होटल बुक कर लो और फिर निकल जाओ। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है ये गेम, क्योंकि आजकल के ट्रैवलर सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बल्कि पूछ रहा है मुझे इस ट्रिप से क्या चाहिए। क्या मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, या मुझे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या मुझे कुछ नया सीखना है। एंड दैट्स वेयर अ ट्रैवल ट्रेंड कम्स इन, विच इज़ कॉल्ड वाई वेकेशन। मतलब सिंपल है, ट्रैवल विद अ पर्पस। इसके बारे में हम बात करेंगे, बने रहिएगा।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। वेल, हम बात कर रहे हैं एक नई ट्रैवल ट्रेंड के बारे में जो पर्पस को पहले रख रहा है, बिफोर द प्लेस। सो पर्पस कम्स बिफोर द प्लेस, और ये सिंपल भाषा में अगर हम बोले वाई वेकेशन क्या है तो ट्रैवल विद अ पर्पस। वेल, आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सब कितना कुछ मैनेज कर रहे हैं, है ना? ऑफिस हो जाए, डेडलाइंस हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इवन फ़ोन नोटिफिकेशंस एंड ईमेल्स। कभी कभी तो लगता है फ़ोन हमसे ज़्यादा एक्टिव है। और इसी कांस्टेंट बिजी लाइफ के बीच लोग ट्रैवल को एक एस्केप नहीं बल्कि एक रीसेट बटन की तरह देखने लगे हैं। एक ऐसी ब्रेक जहाँ बस बॉडी नहीं माइंड भी रिलैक्स करे। इमेजिन कीजिए एक पीसफुल सा लोकेशन, सुबह की वो ताज़ा हवा, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं और दिन का कोई स्केड्यूल भी नहीं है, बस एक कप चाय और थोड़ा सा मी टाइम। मतलब कितना अमेजिंग लगता है, और माइंड में वो थॉट्स भी हमें थोड़े समय तक अगर हम बंद रखें, कोई चीज़ हमें हरी में नहीं करनी है, बस इस पल को ही हमें महसूस करना है, उस पल में रहना है विदाउट एनी प्री कंसीव्ड थॉट्स दैट आर रनिंग इन आवर माइंड। हमारे ब्रेक को भी थोड़ा, माइंड को भी थोड़ा ब्रेक की आवश्यकता हो जाती है, राइट? तो इसीलिए ऐसे वेकेशंस जो है आजकल बहुत एंजॉय किया जा रहा है या प्रिफर किया जा रहा है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। मैं हूँ आपके साथ RJ रवली और बात कर रहे हैं इस ट्रैवल ट्रेंड के बारे में जिसका नाम है वाई वेकेशन, मतलब एक ऐसा वेकेशन विद अ पर्पस। तो जैसे हमने इस गाने से पहले ये जाना कि लोग जो है आजकल एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं या एक ऐसी एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो अपने आप को एक रीसेट होके वापस काम पे आ सके, तो ऐसा कुछ ट्रैवल एस्केप उनके लिए ये बन गया है ट्रैवलिंग एस्पेशली। तो आज कल बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स जो हैं ऐसे ही एक्सपीरियंसेस चूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग नेचर के पास जा रहे हैं या कुछ वेलनेस रिट्रीट चूज़ कर रहे हैं या वही कुछ सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, और सबका रीज़न अलग है लेकिन एक चीज़ जो है वो कॉमन है, वो है खुद के साथ रिकनेक्ट करना। और इसी थॉट से एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, वो है हॉस्पिटैलिटी। नाम सुन के थोड़ा यूनिक लगा ना, मतलब हॉस्पिटैलिटी सिंपल भाषा में या मतलब बोले तो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जहाँ पीस और साइलेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आज के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में साइलेंस भी एक लग्जरी हो गई है या बन चुकी है, क्योंकि हर वक्त फ़ोन की रिंग, मैसेजेस, अपडेट्स, कभी कभी हम वेकेशन पर भी वेकेशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि बॉडी तो डेस्टिनेशन पर होती है लेकिन माइंड अभी भी ऑफिस में ही होता है। और इसीलिए अब ट्रैवलर्स ऐसे प्लेसेस चूज़ कर रहे हैं जहाँ वो थोड़ा स्लो हो सके, जहाँ वो अच्छी स्लीप ले सके, जहाँ वो बस सांस ले सके बिना कोई सोच के, बिना कोई ऑफिस के बारे में सोचे या किसी और विचार के बारे में। तो सिर्फ उन्हें साइलेंस ही चाहिए इस ट्रैवलिंग में। सो दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, साइलेंस इन स्पीस, क्योंकि ये भी आज की दुनिया में कहीं ना कहीं एक लग्जरी बन चुका है।

क्योंकि वर्क ट्रिप्स में भी बहुत लोग अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं आज चेंज कर रहे हैं। अब लोग सिर्फ नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग के लिए ही ट्रैवल नहीं करना चाहते, कभी कभी उन्हें बस एक क्वाइट कॉर्नर चाहिए होता है, एक पीसफुल इवनिंग और थोड़ा पर्सनल स्पेस, बिकॉज ऑनेस्टली रेस्ट लेना भी तो ज़रूरी है। और अब बात करते हैं एक और ब्यूटीफुल शिफ्ट की, क्यूरियोसिटी ओवर करियर। आज के ट्रैवलर्स जो है सिर्फ काम के अराउंड लाइफ प्लान नहीं करना चाहते, बहुत से लोग कह रहे हैं कि लाइफ में सिर्फ अर्न नहीं करना, एक्सपीरियंस भी करना है। इसीलिए ट्रैवल अब लर्निंग का भी एक मीडियम बन रहा है, कोई नई लैंग्वेज सीखने जा रहा है, कोई डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहता है, और वही बस एक कोई नई इन्वायरमेंट में खुद को डिस्कवर करना चाहता है। और ये फीलिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि कभी कभी एक नई जगह हमें हमारे बारे में कुछ नया सिखा देती है जो हमें खुद भी नहीं पता। आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी घर से दूर जाकर ही समझ आता है कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। और शायद इसीलिए ट्रैवलिंग जो है हीलिंग बन रहा है, बनता जा रहा है। और लाइफ में कुछ फेसेस ऐसे आते हैं जब हमें बस पॉज चाहिए होता है, एक डिफ़िकल्ट फेज के बाद, या एक बड़ी चेंज के बाद, या फिर बिना किसी रीज़न के भी। ऐसे मोमेंट्स में एक जर्नी सिर्फ फ़ोटोज़ और मेमोरीज के लिए नहीं होती है, वो होती है अपने आप को थोड़ा टाइम देने के लिए। लाइक नो प्रेशर, नो टारगेट्स, बस सिर्फ क्लैरिटी।

0: టమాటర్ కా కాట్ మస్త్ ఉంటుంది.
1: అదేంది మామ నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
0: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
1: కిరాకుంది మామ, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామ నీకు అన్నీ?
0: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
2: FM Rainbow 101.9.
3: आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9. ऑन स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:39:18. हम बात कर रहे हैं वाई वेकेशंस के बारे में और कैसे ट्रैवल एक लक्जरी बन चुकी है, साइलेंस एक लक्जरी बन चुकी है. दैट आर पीपल रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग एंड यू नो एक्सपीरियंस व्हाट द न्यू ट्रैवलिंग और न्यू प्लेस टीचर्स इज़. और या अपने आप को ढूंढने के लिए भी ट्रैवलिंग आजकल जो है लोग प्रिफर कर रहे हैं. तो अगर हम अब फैमिली ट्रैवल की बात करें तो वहाँ भी एक ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है. पहले फैमिली हॉलीडेज का मतलब होता था सब एक साथ जा रहे हैं, लेकिन अब मीनिंग थोड़ा डीपर हो गया है. अब फोकस है हम साथ में क्या फील करेंगे. एक डिनर कॉन्वर्जेशन, एक रैंडम रोड स्टॉप, एक सनसेट टुगेदर, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो मेमोरीज बन जाती हैं. और दोस्तों कभी कभी एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे साथ में कौन है. और इंटरेस्टिंगली ट्रैवल के ट्रेंड अब कंफर्ट और फेमिलियरिटी की तरफ भी जा रहे हैं. हर बार इंटरनेशनल ट्रिप हो या लॉन्ग वेकेशन ज़रूरी नहीं होता. कभी कभी अपने ही स्टेट के एक हिडन प्लेस, कभी एक वीकेंड गेटअवे या कभी एक सिंपल सा रोड ट्रिप, ये सब ही इक्वली स्पेशल हो सकती हैं.

आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो बात हो रही है वाई वेकेशन की, वेकेशन ट्रैवल विथ पर्पस के बारे में। तो जैसे हमने कहा, बहुत सारे लोगों के लिए एक छोटी सी यू नो रोड ट्रिप या एक अपने ही शहर में या अपने ही स्टेट में एक हिडन सा प्लेस या एक वीकेंड गेट अवे भी इक्वली स्पेशल हो सकती है। और अगर हम रोड ट्रिप्स की तो बात करते हैं तो वो अपने ही एक अलग लेवल का होता है ना, क्योंकि रोड ट्रिप का चार्म ही कुछ और है। अपनी प्लेलिस्ट चूज़ करना, अपने स्पीड चूज़ करना, जहाँ मन करे वहाँ रुक जाते हैं, एक चाय की टपरी पे रुक जाना या वहाँ से एक ब्यूटीफुल व्यू हमें देखने को मिलता है और एक अनएक्सपेक्टेड सा स्टॉप, और वही जर्नी का मैजिक होता है ना, क्योंकि रोड ट्रिप में डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रास्ता। तो दोस्तों, आज का ट्रैवलर जो है सिर्फ दुनिया देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है फील करना, कुछ सीखना चाहता है, कुछ हील करना चाहता है, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट वो खुद को करीब आना चाहता है। तो अगली बार जब आप ट्रिप प्लान करें, सिर्फ ये मत सोचिए कि कहाँ जाना है, एक बार ये भी अपने आप से पूछ लीजिए, मुझे इस जर्नी से क्या चाहिए, क्योंकि वही आंसर आपकी परफेक्ट वेकेशन चूज़ करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी।

तो दोस्तों, आज हमारे इस सेगमेंट में हमने जाना कि वाई वेकेशन क्या है और क्यों आजकल लोग ये ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं, या आजकल ट्रैवलिंग ऑप्शंस बहुत हो गई हैं कि किस तरह की ट्रैवलिंग हम करना चाहते हैं। अब ये नया ट्रेंड उभर के आया है जो ट्रैवल विद अ पर्पस बन चुका है, क्योंकि हमें ट्रैवल क्या करना है और मतलब इस ट्रैवलिंग से मुझे क्या मिलेगा, वो पर्पस जो है अप फ्रंट रख रहा है इस ट्रैवलिंग ट्रेंड में। तो आप भी अपनी नेक्स्ट जर्नी जब भी प्लान कीजिए, थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा फील कीजिए और इस ब्यूटीफुल ट्रैवल मूड को कंटिन्यू करते हुए एक बार सोचिए कि हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए और मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए या मुझे वहाँ से क्या मिलेगा। तो ये सारे सवाल जो है आप अपने आप से एक रिट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और फिर शायद पता नहीं आपकी अगली डेस्टिनेशन आपको कुछ नया सिखा दे या कुछ नया दिखा दे, है ना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ RG रवि।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। वेल हम आप आ रहे हैं हमारे शो के आखिरी सेगमेंट में, हेलो रेनबो में। तो क्योंकि वक्त हो गया है हेलो रेनबो का, आई होप आपका अब तक का दिन जो है बहुत ही अच्छा जा रहा हो। वैसे एक छोटी सी बात पूछनी है आज आपसे मुझे, कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन के 24 घंटे में एक ऐसा टाइम जो है वो ज़रूर होता है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। किसी के लिए वो सुबह की ताज़ी हवा हो सकती है जब एक नया दिन स्टार्ट हो रहा हो, या किसी के लिए शाम का वो पीसफुल मोमेंट जब काम ख़त्म करके थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, या किसी के लिए वो रात का क्वाइट समय जब बस अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या बस यूं ही वक्त बिताते हैं खामोशी में। तो मुझे आपसे आज यही जानना है कि आपका फेवरेट टाइम कौन सा है दिन का, और उसके पीछे की स्टोरी भी क्या हो सकती है आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपके दिन का सबसे फेवरेट टाइम क्या है और क्यों। क्या वो चाय के साथ वाली मॉर्निंग है या फैमिली के साथ डिनर टाइम, कुछ भी हो सकता है जो आप हमारे साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं और नंबर 0402323 0030, 0402323481 या 0402970471 पर।

0: आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपके दिन का सबसे फेवरेट टाइम कौन सा होता है और क्यों। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम।
1: मैं नरसिम्हा रेड्डी मैडम, प्रेमावती पेट, राजेंद्र नगर से बोल रहा
0: जी सर, तो बताइए दिन का आपका फेवरेट वक्त क्या
1: हूँ।
0: है।
1: फेवरेट बोले तो मैडम बोलना मुश्किल है मैडम, क्योंकि
0: मुश्किल है, क्यों।
1: हर टाइम हर काम अपने फेवरेट रहता मैडम। जैसे
0: हाँ
1: काम करना जरूरी है, काम
0: जी,
1: करने जी जरूरी
0: हाँ काम करना जरूरी है, मतलब कोई।
1: है, वो तो होता है कैसा भी। उसके
0: हाँ
1: बाद में खाना खाना रहेगा, उसके बाद में शाम होते नींद का हो रहता, एक बोल के नहीं बोल सकते मैडम। सब आप एक टाइम का ऐसा रहता है, अलग अलग रहता, अलग अलग फेवरेट रहता है। क्या
0: अच्छा, तो दिन का आपका दिन पूरा ही आपके लिए फेवरेट है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सुबह का या शाम का।
1: वो तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता ना मैडम, फेवरेट बोल के दिन
0: जी
1: दिन गुजरना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो कुछ भी करना ही पड़ता पूरे काम।
0: जी सर, बिल्कुल, काम करते हुए

0: भी नो थोड़े लोगों का ऐसा
1: उसके
0: फेवरेट
1: साथ
0: टाइम
1: के
0: होता
1: साथ ये
0: है।
1: सब प्रोग्राम रहते, खाना खाना, नींद नींद वो सब वगैरह।
0: जी राइट सर।
1: सबसे अच्छा क्या बोले तो अपना हेल्थ को जो है ना ठीक रख लेना, वो बहुत ये है मैडम।
0: जी सर, थैंक यू फॉर
1: थैंक यू
0: कॉलिंग।
1: सर।
0: तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछा था कि दिन का आपका फेवरेट वक्त क्या होता है ना, कि दिन में कभी किसी के लिए नो सुबह की वो फर्स्ट नो रोशनी उनके लिए, वो क्वाइट टाइम अपने लिए वो दिन का काफ़ी अच्छा होता है, तो वहीं किसी के लिए नो शाम का वक्त अपने लिए निकालना या कुछ करना वो उनके लिए फेवरेट हो सकता है। तो आपका भी अगर कुछ ऐसा फेवरेट टाइम है ऑफ द डे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून मैडम। फर्स्ट
0: गुड आफ्टरनून मैम, आपका नाम?
2: कॉल मेरा ही था, मैं कट करी गाना डाले बोल के सुने।
0: हाँ जी जी
2: मेरा
0: मैम।
2: फेवरेट कल दिन बोल तो 3

0: दाले बोल के सुने।
1: हाँ जी जी
0: मेरा
1: मैम।
0: फेवरेट दिन बोल तो 3 से 5 तक विविध भारती सुनती हूँ मैं, सखी सहेली और कुछ
1: जी
0: आता 4 से 5 तक, तो
1: जी जी
0: वो डेली, हफ्ता हो, इतवार हो,
1: हाँ
0: कभी भी हो, वो
1: जी जी
0: सुनती हूँ मैं। तो सारा दिन तो अपने सुनते थे, मगर ये फेवरेट टाइम है मेरा, तीन
1: अच्छा,
0: से पांच
1: 3 से 5 बजे तक आप ये
0: जी।
1: सुनते हैं, बहुत ही
0: उसके
1: अच्छा।
0: बाद फिर बंद कर दे के अपना असर वगैरह पढ़ के जिक्र करते, दुआओं में याद रखते सबको, वैसा मैं
1: राइट,
0: फेवरेट बोलता हूँ ये 3 से 5
1: 3 से 5 बजे, राइट राइट।
0: विविध भारती सुनते हुए गुजरता हूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर
0: थैंक
1: कॉलिंग।
0: यू।
1: हेलो, तो जैसे हमने कहा कि वो फेवरेट टाइम कौन सा होता है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए, जैसे मैंने कहा, किसी के लिए मॉर्निंग वॉक ज़्यादा अच्छा लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के उन्हें वो वॉक करना पसंद है जहाँ पे वो क्वाइट टाइम उन्हें मिलता है, या उनके लिए वो मी टाइम हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। हेलो, गुड
0: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
1: आफ्टरनून सर।
0: मैं रमना यार।
1: यस सर।
0: अरे मिकी बंटी टाइम ये मिकी नहीं
1: हाँ,
0: बात करने
1: दे
0: लिखूंगा,
1: लो,
0: दे
1: राइट सर।
0: लो टाइम ये नहीं बात करने लिखूंगा। मुझे है तो मॉर्निंग 5 से 4:35 से 8, 8:30 वरकू 8:30 9 लोपला वो अच्छा समय होता, क्या कहते हो, प्रेयर करने को, रेडियो सुनने को आता है। एक दोपहर मध्यान दोपहर को रेनबो
1: जी।
0: कलर शो वो भी इंटरेस्ट है। और
1: जी
0: शाम को 7 बजे से 8 बजे तक का
1: हाँ
0: कलर शो वो
1: जी
0: भी इम्पोर्टेंट टाइम, उसको
1: जी
0: भी देख लेता रहता हूँ।
1: राइट,
0: क्या
1: तो आपने सेट किया हुआ है आपको इस वक्त में क्या
0: क्या
1: करना है, क्या सुनना है।
0: सो भी है माँ, वैसा टाइम मुझे अच्छा रहता है वो। तो दो दो 3 टाइम
1: हाँ, आपके
0: मेरी
1: 3 टाइम
0: क्या,
1: आपके लिए ये खास है, थोड़ा निकाल के आप एंजॉय करते हो उस टाइम को बेसिकली।
0: हाँ,
1: जी सर।
0: एंजॉय करते हैं मुझे।
1: राइट राइट, थैंक यू सर, थैंक यू
0: अरे
1: फॉर कॉलिंग।
0: रवली, रवली ना, रवली है। हाँ
1: हाँ यस सर, मैं ही हूँ।
0: रवली, गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड
0: मेरे
1: आफ्टरनून
0: साथ
1: सर।
0: में दिर गैस मान बाबा।
1: जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
2: हिरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंग दी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई, एंड
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे। एग्जैक्टली,
3: एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
2: दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
2: इट्स नॉट जस्ट फूड,
3: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इन टू वन।
2: जश्ने
3: जश्ने
2: हैदराबाद।
3: हैदराबाद।

0: राइट ये गाना था फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तो हमने आपसे पूछा था आपका फेवरेट समय क्या है, फेवरेट टाइम ऑफ द डे और क्यों। तो हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर।
1: मैं वॉलेट प्रभाकर बात कर रहा हूँ
0: जी। सर
1: हमारा दिन भर पूरा फेवरेट ही है, उसमें एक बजे से लेके दो बजे तक बहुत फेवरेट है।
0: एक से दो बजे जी सर।
1: एक बजे से लेके दो बजे क्यों बोल तो उस टाइम पे
0: हेलो
1: हमारा परिवार पूरा बात करते।
0: ओके ओके जी जी
1: समझ में आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल हेलो रेनबो का वक्त होता है।
1: एफएम सुनते ना आती ना
0: जी जी जी।
1: सब परिवार आप भी आपसे भी दिल भर बात कर सकते।
0: जी जी आपसे बात होती है हमारी
1: खाने
0: भी।
1: की भी टाइम है यही है। खाने की भी टाइम यही है।
0: ओके ओके तो आप सुनते सुनते अपना लंच करते हो।
1: क्यों बोल तो इससे पहले भी 9 बजे से लेके 10 बजे तक भी फेवरेट था, मगर वो कैंसिल कर दिया ना मेरा सुबह।
0: जी तो अभी 1 से 2 आप ये इस सेगमेंट को एंजॉय करते हो।
1: ये फेवरेट टाइम है। बोले प्रभा करो नमस्ते।
0: राइट सर थैंक यू। तो दिन का फेवरेट वक्त होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है जैसे मैंने कहा। एंड इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन राइट। और वो फाइनली जब हमें वो थोड़ा सा मीट टाइम वाला मोमेंट मिलता है हमें कितना अच्छा लगता है ना। हम कॉल करके ज़रूर हमें मुझे बताइएगा, क्योंकि आज हम या मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो दिन का स्पेशल टाइम जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, जैसे कि यू नो किसी इंटरेस्टिंग बात है या एक सिंपल सा टाइम भी किसी के लिए एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन सकती है। क्योंकि शायद आप इस वक्त पर शायद एक ट्रिप पे गए हो या आपके लिए आपका कोई कंपटीशन आपने इनरोल किया हो या उसमें जीता हो, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उस दिन के साथ या उस वक्त के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि हमारी ब्रेन वैसा यू नो वाइड हुई है तो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ हम सब कुछ जोड़ लेते हैं, हमारा ब्रेन स्पेसिफिकली जोड़ लेता है राइट। तो ऐसे कोई इंटरेस्टिंग दिन है, टाइम है दिन का जो आप काफ़ी प्रेफर करते हो या वेट करते हो, स्पेशली क्योंकि दिन में पूरा काम करने के बाद यू नीड दैट स्पेस फॉर योर सेल्फ, या मैंने अर्ली मॉर्निंग या दिन शुरू होने से पहले आप उस टाइम के लिए वेट करते हो। तो इट डिपेंड्स, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं ऑन 0402323003004023234821 पर।
2: బ్రో ఆకలేస్తుంది బిర్యానీ తిందామా?
3: ఏ

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: FM Rainbow 101.9. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो और मैं हूं आपके साथ आरजे रफली. और आज मैंने आपसे पूछा है कि आपके लिए दिन का सबसे फेवरेट वक्त कौन सा है और क्यों. कई बार जो है स्पेशली इवनिंग लवर्स के लिए शाम का टाइम भी अलग वाइब मिलता है ना. दिन भर की हसल के बाद एक छोटा सा ब्रेक है ना, वो सनसेट देखना या चाय और वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है जो बहुत सारे लोग इस मोमेंट के लिए काफ़ी इंतज़ार करते हैं. क्योंकि अपना वो चाय का वक्त हो या कॉफ़ी का टाइम हो, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू विदाउट हैविंग टू अटेंड एनी वर्क, है ना. तो वो सिंपली नो स्काई को देखना या सिंपली ऐसे ही अपने टेरेस पे बैठना या इन योर फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस वहाँ पे बैठ के आप थोड़ा अपने आप को अनवाइंड कर सकते हो दिन की थकावट, स्पेशली इन द इवनिंग्स. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इवनिंग्स काफ़ी पसंद है, सो दैट दे कैन गिव गेट दैट लिटल टाइम फॉर देमसेल्व्स और थोड़ा बहुत अगले दिन के लिए अपने आप को रिचार्ज कर सकें. तो आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपका दिन में फेवरेट वक्त कौन सा है. तो बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से. हेलो
2: मैडम जी, मैं श्रीनिवास राव मलकपेट मैडम रवली जी.
1: श्रीनिवास जी नमस्कार सर.
2: नमस्कार, कैसे हैं माँ?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
2: हम भी आपके शीशे माँ
1: जी. सर
2: आपका टॉपिक क्या है मैडम आज का?
1: सर टॉपिक हमने पूछा है दिन में आपका फेवरेट टाइम कौन सा है, इज इट अ मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग, कौन सा आपके लिए?
2: कौन सा मैडम?
1: फेवरेट टाइम ऑफ द डे सर. मतलब मॉर्निंग का वक्त आपको अच्छा लगता है या इवनिंग? यस,
2: तो कंपलसरी हमारा टाइम जब हम डेली सुबह में 4 बजे उठते हैं, उठते हैं घर में हम हाथ पांव मार लेते हैं, योगा कर लेते हैं, कर लेके चाय बना लेके चाय बिस्किट खा लेके
1: जी
2: हम हमारे पार्क पे जाते हैं. 5:30 तक हम वहाँ पार्क में रहते हैं मैडम. तो 4:00 टू 7:00 की खबर कई को तो 6:45 को हम लाफिंग करते हैं
1: जी. ओके,
2: हमारे पार्क में एक नॉट मोर देन 30-40 पीपल विल बी अटेंडेड.
1: जी जी,
2: लाफिंग करते हैं और क्लैपिंग भी करते हैं. तो इसके साथ क्या होता है, वो तो सब लोग आते हैं, सब लोग मजा करते हैं, बात कर लेते हैं पूरा. अच्छा अच्छा बहुत अच्छा. मैं जनवरी 20th को स्टार्ट करा.
1: ओके okay, तो आपके लिए ये अच्छा टाइम है, मतलब तो सुबह सुबह का टाइम आप सभी आपके दोस्तों के साथ. राइट राइट,
2: बेस्ट टाइम फॉर मी क्योंकि हम योग कर लेना, कुछ बात करना, क्योंकि लोग ज्यादा कम रहते हैं तो उससे क्या होता है अपने को कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता
1: जी.
2: अच्छा सही तरीके से कर लेते, कोई डिस्टर्ब नहीं करते अपने को.
1: ओके,
2: जैसा जैसा टाइम बढ़ते रहता पूरे आते रहते नमस्ते नमस्ते बोलने में.
1: राइट सर, थैंक यू शेयर करने के लिए.
2: थैंक यू.

0: Right, sir. Thank you. Thank you
1: Amitabh
0: for call.
1: Bachchan, Dharmendra
0: हाँ,
1: मैडम, चावल बांटे नहीं
0: राइट
1: हमें,
0: राइट सर,
1: क्या
0: थैंक
1: क्या
0: यू फॉर
1: बात है,
0: कॉलिंग.
1: एमएस उस्मान ने।
0: राइट, तो जैसे मैंने आज आपसे पूछा है कि आपका फेवरेट वक्त क्या है दिन का, स्पेशली, और जब भी हमने मॉर्निंग फेवरेट्स के बारे में बात की, जिन्हें फेवरेट टाइम मॉर्निंग लगता है या किसी के लिए शाम का वक्त होता है, तो वैसे ही नाइट टाइम भी है जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है नाइट आवल्स होते हैं, है ना, उन्हें रात का साइलेंस और कामनेस बहुत पसंद होता है. कभी कभी रात का वो क्वाइट टाइम ही होता है जब हम शायद खुद को प्रॉपरली सुन पाते हैं बिना कोई शोर शराबा के. राइट, तो क्या आपका फेवरेट टाइम बचपन से सेम ही रहा है या ओवर द ईयर्स चेंज भी हुआ है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 1040-2323-0030 या 2323-4821 पर.
2: Hey, very hungry. What's special today?
3: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
4: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
2: And where do we taste all these?
3: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
4: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi biryani, it's a feast for your ears.
5: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

0: FM Rainbow 101.9.
1: हेलो, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. तो आज का सवाल था कि क्या दिन का आपका फेवरेट वक्त कोई है. तो हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो
2: हेलो रवि जी.
1: हेलो सुषमा जी.
2: गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून.
2: आप आए, बहुत अच्छा लगा.
1: जी जी, थैंक यू सो मच. तो बताइए, आपका वक्त दिन का अच्छा या फेवरेट टाइम कौन सा है?
2: तो मेरा फेवरेट टाइम तो आप लोगों से बात करने वाला टाइम ही मेरे को बहुत अच्छा लगता.
1: जी जी, हम ही भी आपसे मौका मिलता है आपसे बात करने का,
2: क्योंकि ये टाइम पे आप लोग कॉलर से बात करते हैं.
1: जी जी बिल्कुल,
2: इसीलिए करके. और एक बात बोलना चाहूंगी, एक देखिए टाइम बोल रहे ना आप, उसके मीनिंग बहुत है कि जब आपका टाइम अच्छा चलता है ना, वो सबसे अच्छा टाइम होता है. और हाँ, एक बैड टाइम, जो आप बैड और गुड में फर्क समझते ना
1: जी,
2: वो है. देखिए वो मीनिंग है, जब अच्छा टाइम लगता है तो हर दिन अच्छा लगता है आपको. आपकी जिंदगी जब अच्छी चलती है ना, तो वो दिन भी अच्छा रहता है, टाइम भी अच्छा रहता
1: है.
2: सबका अच्छा चले, मैं तो यही चाहूंगी सबको अच्छा ही रहे.
1: बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सुषमा जी फॉर कॉलिंग.
2: इतना से सवाल दिया आपने.
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग. राइट, तो अगला गाना आ रहा है आशा भोसले का गाया हुआ गाना ओ मेरे सुना. सो एंजॉय दिस ट्रैक.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की

0: मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर। इस रेडियो से घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: आज उर्दू प्रोग्राम नए रंग में आप समाप्त कर सकेंगे। खिरात कलाम पाक, हरफ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश होगी एम ए हाई की। डॉक्टर माइक पर आप समाप्त कर सकेंगे एक इंटरव्यू जिसका उनवान है ख्वातीन में आम बीमारियां, और फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जाओ। और साथ में हम बात करेंगे मौसम बरसात और एहतियाती तदाबीर। आखिर में पयाम शब से आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आगाज पर समाप्त कीजिए खैरात कलाम पाक।
1: الشيطان

0: 101.9 MHz पर अभी आप समाप्त कर रहे थे खिरात कलाम पाक, खारी की बेहतरीन आवाज अभी आप सुन रहे थे। सामाइन लीजिए समाप्त कीजिए हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश है एम ए हाई की।
1: इंसान शुरू ही से तहकीक का हामिल है, क्यों और कैसे लफ्ज़ों की तशफ़ी के लिए उसने खोज शुरू की और कायनात के कई राज और पोशीदा पहलू को खोल कर रख दिया। दुनिया के मादी, हयातियाती और समाजी पहलुओं के बारे में ऐसी मालूमात दें जिसकी वजह से आज दुनिया ऐसी शक्ल में मौजूद है जो एक बहरे रवां की तरह चल रही है और आगे बढ़ने के लिए खूब से खूब तर और मज़ीद तरक्की की तरफ गामजन है। तहकीक यानि रिसर्च का मतलब है मसाइल को हल करने के लिए एहतियात के साथ साइंसी तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए तजज़ियाती मुतालया करना जिससे मसले का हल निकल आए। तहकीक यानि खोज करना, छानबीन या तफ्तीश करना होता है। तहकीक कई तरह की होती हैं। जब हम किसी भी बुनियादी साइंसी नज़रिए पर काम करते हैं तो इसे बुनियादी तहकीक कहते हैं। दूसरी किस्म में हम किसी अमली यानि प्रैक्टिकल मसले को हल करते हैं, इसे इत्तलाकी तहकीक अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। जिस रिसर्च में हम आदाद व मकदार की बात करते हैं, शुमारियात के ज़रिए अपने नज़रियात को पेश करते हैं तो इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अगर तजुर्बात और दलाइल के ज़रिए किसी नज़रिए को साबित किया जाए तो इसे कलेक्टिव रिसर्च कहते हैं। तहकीक के लिए हमें मरहलेवार अमल करना होता है, जैसे पहले मुशाहिदा, फिर पस मंज़र की तहकीक, इसके बाद मफरूज़ात सामने रखना और फिर इसी हवाले से लाए अमल या तजुर्बा करना। तहकीक अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर कुछ ऐसे नतायज सामने लाना जो हर एक के लिए फ़ायदेमंद हों, और अगर हमारी मेहनत दूसरों के काम आए तो इससे मुल्क का और आवाम का, माशरे का मेयार बुलंद होगा।
0: जी हाँ दोस्तों, इंसान के अंदर ये कुदरत की एक बहुत बड़ी खूबी रखी हुई है कि इंसान तहकीक करता यानी सोचता है। अभी आप समाप्त कर रहे थे हर्फ ताबिंदा, तहरीर और पेशकश थी एम ए हाई की। लीजिए समाप्त कीजिए डॉक्टर माइक पर डॉक्टर इरफाना तस्नीम से एक इंटरव्यू जिसका उन्वान है ख्वातीन में आम बीमारियां। लीजिए समाप्त कीजिए।
2: इंसानी मुआशरे की बुनियाद औरत है। अगर घर को एक इमारत समझा जाए तो उसकी बुनियाद औरत होती है। माँ की गोद बच्चे की पहली दर्जगाह और उसकी सेहत पूरी नस्ल की सेहत का फैसला करती है। सेहतमंद माँ सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक सेहतमंद मुआशरा पैदा करती है। तिब्बी और ख़ास तौर पर यूनानी नुक्ते नज़र से औरत का मिजाज यानी कि टेम्परमेंट आम तौर पर बारिद रतब यानी ठंडा तर होता है। इसी वजह से औरत में खून की कमी, जल्द थकान, हार्मोनल बिगाड़ जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, वज़न का बढ़ना ज़्यादा पाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि औरत घर वालों की दवा बन जाती है लेकिन अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करती रहती है। औरत दर्द छुपाने की आदत रखती है और इसी आदत से बीमारी बढ़ जाती है। यूनानी तिब के मुताबिक सेहत 6 चीज़ों पर मबनी होती है। सबसे पहले हवा, ग़िज़ा, हरकत व सुकून, नींद व बेदारी, इस्तेफराग यानी कि फासिद मादों का निकलना जैसे पसीना, पेशाब, माहवारी, और आखिर में नफसियात यानी कि जहनी सुकून। जब इन में बिगाड़ आता है तब औरतों के

अमराज पैदा होते हैं। खून की कमी, ये औरतों का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मर्ज़ है, ख़ास तौर पर लड़कियों और जवान औरतों में। सारे आलम में तकरीबन 30% औरतें, जो कि 15 से 50 साल के दरमियान होती है, ये खून की कमी से मुतासर होती हैं, यानी कि तकरीबन 540 मिलियन औरतें जो हामिला ना हो और 32 मिलियन हामिला औरतें सूलखिनिया यानी कि एनीमिया का शिकार होती हैं। कुल मिलाकर 500 मिलियन से ज़्यादा ख़वातीन खून की कमी से मुतासर होती हैं। हर 3 में से एक औरत आलमी सतह पर इसका शिकार होती है। हिंदुस्तान में सर्वे के मुताबिक 15 से 50 साल के उम्र के दरमियानी औरतों में तकरीबन 57% लोगों में खून की कमी पाई गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमरे में 53 से 54% ख़वातीन आती हैं। हामला औरतें 52% एनीमिक पाई गई हैं, मतलब हिंदुस्तान में आधी से ज़्यादा औरतें खून की कमी से मुतासिर है। सारे आलम में 30% और हिंदुस्तान में 55 से 57% यानी दुगनी तादाद में खून की कमी पाई जाती है। अगर हम देखें तो तफसीली वजूहात इस एनीमिया या सूलखिनिया के ये हैं कि माहवारी में कसरत से खून का ज़ाया होना, नाश्ता छोड़ देना, अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते हैं, या फिर चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पर गुजारा करते हैं या फिर चाय बिस्किट खाते हैं, तो बाज़ लोग डाइटिंग करते हैं जिसकी वजह से ग़िज़ा सही तौर पर नहीं लेते हैं, और ये नहीं बल्कि बाज़ हामिला औरतें हैं जो सही ग़िज़ा नहीं लेती हैं, और फिर आखिरी उसमें आता है कीड़े जरासीम जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, इनकी वजह से खून की कमी होती है। अब खून की कमी के अलामत जो आम तौर पर पाए जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस का फूलना, आँखों के नीचे स्याही या फिर होंठों का सफ़ेद हो जाना, हाथ पांव ठंडे हो जाना, दिल घबराना, याददाश्त की कमज़ोरी। खून की कमी से होने वाले पेचीदा नुकसान में ये है कि दिल की धड़कन में बेकायदगी पाई जाती है, कभी बेहोशी हो जाती है, इम्तिहान में तवज्जो की कमी होती है, बच्चों का कम वज़न पैदा होना यानी जो बच्चे नौमौलूद होते हैं उनका वज़न बहुत कम होता है। खून कम हो तो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि हिम्मत भी कम हो जाती है। खून की कमी को दूर करने के लिए ये घरेलू तदाबीर अख्तियार की जा सकती है। सुबह खाली पेट यानी नहार मुंह 1 चम्मच शहद लें और रात में भिगोए हुए 5 मुनक्खे लें और इस्तेमाल करें। इससे बहुत तेज़ी से खून में इजाफा हो जाता है। और दूसरी तरकीब जो है जिसे ABC जूस कहते हैं, यानी कि आप चुकंदर लें, उसमें गाजर का इजाफा करें और एप्पल यानी कि सेब इसमें डालें, इसका जूस बनाएं और इस्तेमाल करें। दूसरा नुस्खा ये है कि आप चुकंदर लें, उसमें गाजर डालें, अनार का जूस डालें और चाहे तो टमाटे का भी इजाफा करें। इससे बहुत तेज़ी से खून में इजाफा होगा। गुड़ और तिल के लड्डू भी बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होते हैं। पालक का इस्तेमाल करें और इसके अलावा कच्चे जो काले चने होते हैं उसे रात में भिगोएं और सुबह इसमें स्प्राउट्स यानी मुल्के पैदा हो जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल गुड़ के साथ करें। ये नहायत ही मुफीद फ़ायदेमंद साबित होगा। यही नहीं बल्कि कलेजी के इस्तेमाल से भी खून में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। इसके अलावा आप रात में सोते वक्त 2 अदद खुबानी भिगने डालें, थोड़ी सी किशमिश या मुनक्खा, 2 अदद अंजीर भिगोएं, इसके साथ एक 4 अदद बादाम भिगोएं और इसका इस्तेमाल सुबह सवेरे नहार पेट करने से ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होगा। यही नहीं बल्कि आप दाल जब इस्तेमाल करते हैं, दाल या पालक,
इस पर नींबू निचोड़े। नींबू निचोड़ने से फायदा ये होगा कि

आयन एब्जॉर्प्शन दुगना हो जाएगा। यही नहीं, बल्कि हम आम तौर पर बचपन में अक्सर बच्चे चिक्की खाते हैं जो गुड़ और तिल से बनाई जाती है, या फिर फली और गुड़। इसके इस्तेमाल से भी खून में काफी हद तक इजाफा होगा। और जो फल होते हैं, फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। जब हम ये फल इस्तेमाल करें, जैसा कि आंवला, नींबू, जाम, टमाटर, या फिर आप मौसम्बी, नारंगी, ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। और विटामिन सी की मदद से आयन एब्जॉर्प्शन बहुत जल्द होता है। जब भी आप इस्तेमाल करें, शक्कर की बजाय आप गुड़ इस्तेमाल करें, क्योंकि शक्कर से सिर्फ कैलोरीज बढ़ते हैं, लेकिन गुड़ के इस्तेमाल से आपका खून का लेवल बहुत जल्द बढ़ जाएगा। और जो बाजार में दवाई मिलती है, उसमें आप शरबते फौलाद या फिर खुरसे फौलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहायत ही मुफीद और मुजर्रब साबित होगी। औरतों में, ख्वातीन में जो ज्यादातर पाया जाता है, दूसरा मर्ज ये है कि माहवारी के मसाइल, अमराज़े हैज। माहवारी औरत के जिस्म का फितरी निज़ाम है। ये असल में जिस्म की सफाई का अमल है। माहवारी बंद हो तो जिस्म में फासिद मादे जमा होने लगते हैं। इसकी आइए हम तफसील से अकसाम देखते हैं। एक वो होता है जिसे हम डिसमेनोरिया कहते हैं, यानी उस रेतम्स। जब माहवारी होती है तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये यूट्रस में यानी रहम में स्पैजम्स की वजह से होता है। दूसरा होता है खिल्लते हैज, यानी खून कम आना। अक्सर खून की कमी या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसे एहतबाज़े हैज भी कहते हैं। फिर एक तीसरी किस्म होती है जिसे हम कसरते तम्स कहते हैं, यानी इसमें खून की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़ाया हो जाता है, और ये सूलखनिया यानी एनीमिया का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। इसके अलावा औरतों में जो आम तौर पर मर्ज पाया जाता है, वो सैलानुर रहम है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। ये रहम की कमजोरी की वजह से या फिर कोई इन्फेक्शन की अलामत होती है। घर पर आसान तौर तरीके से आप ये नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन और गुड़ का खैवा, यानी अजवाइन को उबाल लें, फिर उसमें गुड़ का इजाफा करें और इस्तेमाल करें। इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करें, इससे भी दर्द में कमी होगी। गर्म पानी का बोतल, यानी हॉट वाटर फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, आप एक थैली में पानी गर्म कर लें और इससे सेका लें। यही नहीं, बल्कि सौंफ के पानी का भी इस्तेमाल करें। ये नहायत ही मुफीद होगा। इसके अलावा घर पर निर्मली होती है, वो भी चूसने से या उसके इस्तेमाल से सैलानुर रहम यानी कि वाइट डिस्चार्ज में नहायत ही फायदा होगा। यही नहीं, बल्कि मौसम में जब सिंघाड़े आते हैं, तो वो सिंघाड़ों का पाउडर इस्तेमाल करने से भी, जो औरतों में कमर दर्द होता है और सैलानुर रहम की शिकायत होती है, उसमें काफ़ी हद तक फायदा होगा। तीसरा मर्ज जो आलमी सतह पर देखा जा रहा है और अक्सर ख्वातीन इसमें मुब्तला होती हैं, वो है मोटापा। यूनानी तिब के मुताबिक मोटापा बलगम की ज्यादती से होता है। मोटापे के वजूहात देखें अगर हम, तो ज्यादातर ये है कि रात देर गए तक जागना, सुबह देर तक सोना, मीठी चीज़ों का ज्यादा इस्तेमाल, बेकरी के बने हुए अशिया का इस्तेमाल, मोबाइल पर ज्यादा देर तक रहना, या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस जो कहते हैं, उसकी वजह से। अब आम तौर पर ये देखा जा रहा है, घर बैठे हम सवारी के लिए उबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सौदा सामान चाहिए तो जोमैटो से मंगा लेते हैं या फिर जिप्टो से मंगा लेते हैं। और खाना बनाने में अगर कोई मेहमान वगैरह आ गए हैं अचानक, तो आप जेप्टो या स्विगी से चीज़ें मंगा लेते हैं। तो जो आम तौर पर औरतों की वर्जिश होती है या जो एक्सरसाइज होता है, वो बिल्कुल भी तौर पर नहीं हो रहा है। ये एक ख़ास वजह है मोटापे की।
और इससे होने वाले नुकसान ज़्यादातर ये है कि PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बांझपन,

ज़्याबतीस की ज़्यादती हो रही है, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ना बढ़ जाता है, घुटनों में या जोड़ों में दर्द होता है। मोटापा खुद एक मर्ज नहीं बल्कि कई अमराज की माँ है। घरेलू तदाबीर, नीम गर्म पानी में नींबू और शहद का इजाफा करें, मेथी दाना भिगाकर इस्तेमाल करें, जीरे का पानी कसरत से इस्तेमाल करें, रात का खाना जल्दी खाएं। इलाज के तौर पर आप सुफूफ़े मुहज़्ज़ल इस्तेमाल करें, अरख़े ज़ीरा इस्तेमाल करें, रोगने जैतून से मालिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्जिश करने की या चलने की कोशिश करें। इसके बाद जो आम तौर पर पेचीदगियाँ पाई जाती हैं वो हमल या जच्चगी के दौरान पाई जाती है। हमल औरत की ज़िंदगी का नाजुक मरहला है। इसमें पाई जाने वाली मुमकिन पेचीदगियाँ ये हो सकती है कि प्री एक्लैम्शिया यानी बीपी का बढ़ जाना, जिस्टेशनल डायबिटीज़ यानी हमल के दौरान ज़ियाबतीस में मुब्तला होना, एनीमिया, सूलखनिया जिसका हम पहले से ही जिक्र कर चुके हैं, या फिर इसकी वजह से प्रीमेच्योर बच्चे का पैदा होना। इन सब परेशानियों से या दरगुजर होने से बेहतर है कि आप अच्छी ग़िज़ा लें, दूध का इस्तेमाल करें, अंडा इस्तेमाल करें, दाल, सब्ज़ी, खजूर बकसरत इस्तेमाल करें और अनार भी अपने ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। नारियल पानी इस्तेमाल करें, सौंफ का पानी इस्तेमाल करें, इलायची और दूध इस्तेमाल करें, या फिर ज़रूरत हो तो किसी की निगहदाश्त में खमीरे मरवारीद, शरबते अनार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माँ की ग़िज़ा बच्चे की तकदीर लिखती है, तो माँ को चाहिए कि वह अच्छी से अच्छी ग़िज़ा ले, फाखा ना करे। औरतों में पाए जाने वाले अवारजात या अमराज में एक जहनी सेहत भी बहुत हद तक नुमायाँ तौर पर असर करती है। नफ्सियाती अमराज, औरत पर नफ्सियाती दबाव ज़्यादा होता है। नफ्सियाती अमराज जैसा कि डिप्रेशन, एन्जाइटी या फिर माइग्रेन, आधा सर दर्द, बेख्वाबी, ये सब शिकायतें पाई जाती हैं। इसके असबाब में ज़्यादातर पर ये होता है कि घर में ज़्यादातर बोझ, घर के कामकाज का बोझ, तनख़ीद, क्योंकि औरतें अक्सर तनख़ीद का निशाना बनती हैं, या फिर एक वजह ये भी होती है कि वो घर पर तन्हा होती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, या फिर हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से भी नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो जाती हैं। घर पर आप शरबते गौजबान का इस्तेमाल कर सकते हैं इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, या फिर खमीरे गौजबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगने बादाम दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप में ज़्यादातर निकलें आप, अपने आप को बंद कमरे अंधेरे में ना रखें, धूप में निकलें, बाहर जाएं, रोशनी उजाले में रहें, सैर करें, जिक्र करें, किसी अपने से बात करें, ज़हनी सुकून आदि दवा होती है। इसके बाद आजकल ज़्यादा तौर पर जो औरतों में अवारजात या अमराज देखे जा रहे हैं उनमें अहम है हड्डियों की कमज़ोरी। माहवारी के बंद होने के बाद ईस्ट्रोजन कम होता है और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी। दुनिया भर में तकरीबन 200 मिलियन ख़वातीन इसमें मुब्तला है। हर 4 में से एक औरत यानी 25% औरतें इस मर्ज़ में मुब्तला है। माहवारी के बंद होने के बाद यानी मेनोपॉज के बाद इसकी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसमें गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। एक सर्वे के मुताबिक 10% औरतें जो 60 साल की उम्र की हैं उनमें ये मर्ज़ पाया जाता है। 70 साल के बाद 20% औरतों में ये मर्ज़ लाहक होता है। 80 साल के बाद तकरीबन 40% औरतों में ये लाहक होता है, और 90 साल के बाद
66% औरतों में ये मर्ज

पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जितनी उम्र बढ़ती जाएंगी उतनी हड्डियां कमज़ोर होती जाएंगी। 50 साल के बाद आधी औरतों में यानी 50% औरतों में बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती हैं। औरतों को मर्द की बनिस्बत 5 गुना ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये आंकड़े तो पहले के हैं, लेकिन कोविड के बाद ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कम उम्र औरतों में, हत्ता के टीनेजर्स में भी देखा जा रहा है। यही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी जो घर पर रह रहे हैं, ज़्यादा खेलकूद नहीं करते हैं, उनमें भी ये शिकायत पाई जा रही है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो रिस्क होते हैं वो ये है कि हर 2 औरतों में से एक पोस्ट मीनोपॉजल औरत यानी हैज के बंद होने के बाद कोई ना कोई एक औरत की ज़िंदगी में फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटने का रिस्क होता है। हर 3 में से एक औरत फ्रैक्चर के ख़तरे में होती है। 90% से ज़्यादा हिंदुस्तानी ख़वातीन में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ये सबसे अहम वजह है ऑस्टियोपोरोसिस की। और अगर विटामिन डी की कमी हो तो चाहे हम जितना भी कैल्शियम लें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। विटामिन डी नहायत ही मुफीद और ज़रूरी है। आप ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जैसा कि दूध। अगर डेली ख़वातीन 1 ग्लास दूध लें तो उसमें 250 से 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जो कि एक गोली लेने से, कैल्शियम की गोली खाने से बेहतर है। यही नहीं बल्कि आप डेयरी अशिया इस्तेमाल करें, जैसे कि दही, छाछ, पनीर या चीज़। चीज़ आप एक लिमिट में इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना करें। हरी सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पालक, मेथी, ड्रमस्टिक, मूंगा या सोजनी की फली जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सरसों का साग, इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि मैग्नीशियम और आयरन भी होता है। आप तुख्म ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। तिल, ये जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए कैल्शियम का सबसे बेहतरीन ज़खीरा है। रागी का इस्तेमाल करें, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, तुख्म अलसी, ये नहायत ही मुफीद है। आप 1 चम्मच तिल इस्तेमाल करें। 1 चम्मच तिल रोज़ाना खाने 1/2 ग्लास दूध पीने के बराबर है। डेली आप रोज़ाना सुबह उठकर 1 चम्मच भुनी हुई तिल और 4 बादाम खाएंगे तो इससे कैल्शियम फौरी तौर पर बढ़ जाएगा। यही नहीं बल्कि आप ग़िज़ा में दाल का इस्तेमाल करें, काला चना ज़्यादा इस्तेमाल करें, राजमा, सोयाबीन, इसमें बहुत ही ज़्यादा मकदार में कैल्शियम और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। टोफू का इस्तेमाल करें, कुल्थी या फिर रागी की रोटी इस्तेमाल करें। यही नहीं बल्कि मछली, अंडा इस्तेमाल करें और कलेजी का भी कसरत से इस्तेमाल करें। हर औरत को चाहिए कि वो रोज़ाना कम से कम 1 अंडा ज़रूर अपनी ग़िज़ा में इंक्लूड करें और मेवे जैसा कि मौसमी, अंजीर, खजूर, मौज़, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप और रोज़ाना आदत बना लें कि 15 से 20 मिनट आप सुबह सूरज की रोशनी में रहे, यानी कि 8 से 10 बजे के दरमियान सुबह की धूप ज़रूर ले, और आप देखेंगे ये धूप आपके चेहरे पर और आपके हाथ पर ज़रूर लगे। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रोक दें यानी एहतियात से करें। कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा मकदार में चाय, कॉफ़ी, चिप्स जो कि तेल में तले गए हों, या ज़्यादा मकदार में नमक, और औरतें बिल्कुल भी स्मोक ना करें। ऐसा करने से कैल्शियम के लेवल्स में कमी आती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप रोगन जैतून की मालिश ज़रूर करें। कैंसर की बेदारी, औरतों में चूंकि आजकल कैंसर बहुत आम हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर, ये ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने मुआयना बार बार कराते रहें, ये देखें कि कोई गांठ तो ना आई हो या फिर कोई सूजन।

0: जन तो ना हो, या फिर कोई किस्म का अखराज तो ना हो रहा है, या फिर आपका बेवजह माहवारी की तरह कोई खून आ रहा है, या बदबूदार सफ़ेद पानी का अखराज हो रहा है, तो आप हर महीना खुद से मुआयना कर ले। जल्द तशखीस जिंदगी बचाती है। इस मामले में लापरवाही ना करें और सफाई का ख्याल रखें। माहवारी में सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़े बार बार तब्दील करते रहें, वरना इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। और रोज़ाना 8 से 10 ग्लास पानी इस्तेमाल करें और अपनी सफाई, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत की सेहत उसकी ज़ाती नहीं, कौमी जिम्मेदारी है। जब औरत सेहतमंद होती है तो घर खुशहाल होता है, और जब घर खुशहाल होता है तो मुआशरा तरक्की करता है। औरत को सिर्फ इज्जत नहीं, सेहत भी चाहिए।
1: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। समय ना भी आप समाप्त कर रहे थे डॉक्टर माइक पर इंटरव्यू डॉक्टर इरफाना तस्नीम से। उनवान था ख्वातीन में आम बीमारियां। लीजिए समाप्त कीजिए इस महफिल का अगला प्रोग्राम, फिल्मी नगमों से सजा प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। गीत सुरे लगाते जा में सबसे पहले समाप्त कीजिए नगमा किशोर कुमार की आवाज में।
0: इंसानी मुआशरा

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामय नवी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं मौसम बरसात और एहतियाती तदाबीर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मौसम बरसात अपने साथ खुशियाँ और पकोड़े और चाय की महफिलें लाता है, वहाँ ये अपने साथ सेहत के हवाले से कई चैलेंजेस और बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही इंसान को शदीद बीमार कर सकती है, इसलिए बारिश के लुत्फ को बरकरार रखने के लिए सेहत का ख्याल रखना और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस रेडियो सी घड़ी में 10:21 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे मौसम बरसात और एहतियाती तदाबीर। सामिन, बारिश का मौसम कुदरत की हसीन नेमतों में से एक है। जब आसमान पर घटे बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलती है और बारिश की बूंदें जमीन पर बरसती है, तो हर तरफ ताजगी, शादाबी और खुशगवार माहौल पैदा होता है। दरख्त, पौधे और खेत सरसब्ज हो जाते हैं और गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी आती है। बारिश का पानी माहौल को साफ करता है, फिजा में मौजूद गर्द गुबार को खत्म कर देता है, जिससे हवा निस्बतन साफ हो जाती है। किसानों के लिए भी ये मौसम निहायत अहमियत रखता है, क्योंकि बारिश फसलों की नशोनुमा में मदद देती है और जेर ज़मीन पानी के ज़खायर में इजाफा करती है। समय ना, इसी तरह हम बात करते रहेंगे। इससे पहले समाप्त कीजिए ये नगमा।

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सीघड़ी में 10:27 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं मौसम बरसात और एहतियाती तदाबीर। सामेन, बारिश के दौरान नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी और गले की सोजिश जैसी बीमारियां आम होती है। बारिश में भीगने से जिस्म का दर्ज हरारत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कुव्वत मदाफ़त मुतासर हो सकती है। इसलिए बारिश में गैर ज़रूरी तौर पर भीगने से गुरे

करना चाहिए। अगर कोई शख्स भीग जाए तो इसे फौरन खुश कपड़े पहनने चाहिए ताकि बीमारी से बचा जा सके। सामने इसी तरह हम बात करते रहेंगे, लीजिए समाप्त कीजिए यह नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। इस रेडियो सिगड़ी में 10:33 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे थे मौसमी बरसात और एहतियाती तदाबीर। जी हाँ दोस्तों, मानसून के आते ही हवा में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह नमी और मातदल दर्जे हरारत जरासीम, वायरस, फंगस और मच्छरों की अफजाइश के लिए सबसे बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं। यही वजह है कि इस मौसम में मलेरिया, टाइफाइड, जिल्द की एलर्जी और नज़ला ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियां आम हो जाती है। बीमारी हमारी क़ुव्वत मदाफ़त भी इस मौसम में कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जरासीम हमारे इंसानी जिस्म में हमला करते हैं। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियो सीढ़ी में 10:40 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरेले का तुझा, और साथ में हम बात कर रहे हैं मौसम में बरसात और एहतियाती तदाबीर। सामिन, साफ पानी और मयारी खुराक इस मौसम में बेहद ज़रूरी है। ताज़ा, साफ और गजाइयात से भरपूर गजा जिस्म को बीमारियों से लड़ने में ताकत फराहम करती है। ज़ाती सफाई भी अच्छी सेहत की बुनियादी शर्त है। खाने से पहले और बैतुलखला के इस्तेमाल के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए। फल और सब्जियां इस्तेमाल करने से भी पहले अच्छी तरह धोनी चाहिए। बच्चों को ख़ास तौर पर सफाई की आदत डालनी चाहिए। सामने लीजिए, समझ कीजिए ये नगमा।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं मौसम में बरसात और एहतियाती तदाबीर। सामीन, बारिश के मौसम में मुनासिब लिबास पहनना भी ज़रूरी है। हल्के मगर जिस्म को ढांपने वाले कपड़े पहनने चाहिए, और बाहर निकलते वक्त छतरी साथ रखनी चाहिए। गीले जूते या कपड़े ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल्दी बीमारियों और फंगस का खतरा बढ़ जाता है। वर्जिश, मुनासिब आराम और मुतवादिन ग़िज़ा भी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। मौसमी फल, सब्जियां, दूध, अंडे और दिगर ग़िज़ायात से भरपूर ग़िज़ाएं जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत बनाती है। रोज़ाना बेहतर नींद लेने से भी इंसान बीमारियों से बेहतर तौर पर महफूज रह सकता है। लीजिए समझ कीजिए ये नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 MHz पर। स्टूडियो सी घड़ी में 10:51 हो चुके हैं। अभी आप समाप्त कर रहे हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा, और साथ में हम बात कर रहे हैं मौसम बरसात और एहतियाती तदाबीर। दोस्तों, अपने घर के आसपास कूलर, गमलों, पुराने टायरों या छत पर पानी हरगिज़ जमा ना होने दें। जमाशुदा पानी मच्छरों की अफजाइश की सबसे बड़ी वजह बनता है। घर की खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, ख़ास तौर पर खाने से पहले और बाहर से घर आने के बाद। हाथ धोना जरासीम को जिसमें दाखिल होने से रोकता है। लीजिए समाप्त कीजिए ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। सामईन अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम गीत सुरे लगाते जा। कल उर्दू प्रोग्राम नए रंग में सामईन आप समाप्त कर सकेंगे हर्फ ताबिंदा, भुलाए नहीं भूलते और पयाम शब। सामईन लीजिए समाप्त कीजिए पयाम शब। तहरीर और पेशकश है नदीम अख्तर जैदी की।

उस सितमगर की हकीकत हम पे जाहिर हो गई, कतम खुशफहमी की मंजिल का सफर भी हो गया। इंसान को हकीकत पसंदी, बसीरत और तजुर्बात से सबक हासिल करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोगों के बारे में खुशगुमानियाँ पाल लेते हैं और उनकी खामियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हमारी ये गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। जब किसी जालिम या बेवफा शख्स की असल हकीकत आश्कार होती है तो उसके बारे में जो खुशफहमियाँ थीं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इस बारे में ये सबक है कि इंसान को जज्बात के बजाय

किरदार और अमल की बुनियाद पर लोगों को परखना चाहिए। जिंदगी में हर शख्स को आंख बंद करके अच्छा न समझो, लोगों को उनके किरदार और आमाल से पहचानो। जब हकीकत सामने आ जाए तो जिद और खुशफहमी के बजाय उसे कबूल करो और आगे बढ़ जाओ। खुशफहमियाँ वक्ती सुकून तो दे सकती हैं, लेकिन हकीकत को तस्लीम करना ही दानाई है। जो शख्स सच को कबूल कर लेता है तो वो धोखे और मायूसी से खुद को महफूज रखता है।

अभी आप समाप्त कर रहे थे पयाम शब, तहरीर और पेशकश थी नदीम अख्तर जैदी की। समय स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चनी लम्हात में आप समाप्त कर सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से, जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: वाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे।

सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली बढ़त हुई। सेंसेक्स 262 अंक यानी 0.3% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक यानी 0.4% बढ़कर 24,271 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग सपाट रहा। बाजार बढ़त के साथ खुले और पहले के आधे सत्र में तेजी का रुख रहा, लेकिन दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और आज मिलाकर लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।

0: Mark, domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 262 points or 0.34% to close at 77,764. The Nifty also added 95 points or 0.4% to settle at 24,271. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index slipped 0.2%, while the small cap 100 index ended nearly flat. Earlier, the markets opened higher and maintained upbeat momentum throughout the first half. However, in the latter half of the session, both indices paired their early gains amid profit booking, but managed to close higher for the third consecutive session.
1: Sensex में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL Tech 5.8%, बजाज फिनसर्व 2% से अधिक और टेक महिंद्रा तथा भारती एयरटेल 1.8% बढ़े. वहीं बात खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की करें तो एक्सिस बैंक 1.5% से अधिक, SBI तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% से अधिक गिरे और लार्सन एंड टूब्रो में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 2.2%, focused IT rose over 1.7%, and IT climbed more than 1.5%. In contrast, power plunged 2.4%, capital goods fell almost 2.3%, and PSU banks lost over 1.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,257 companies advanced, 1,986 declined, and 198 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 17 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए और 22 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.71 पर कारोबार कर रहा था. विशाल, आज की ट्रेजेक्ट्री को आप कैसे आंकते हैं, मार्केट ट्रेजेक्ट्री को?
2: देखिए प्राची, आज तो सब तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है. अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, और सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल है. हालांकि ग्लोबल मिक्स्ड क्यूज हैं मोटे तौर पर अगर देखा जाए, और समझने की कोशिश करें तो आईटी सेक्टर जिसने पिछले हफ्ते काफी नीचे खींचा था मार्केट को, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेक्टर से संबंधित जो स्टॉक्स थे उनमें जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई थी वैश्विक स्तर पर, उसका सीधा असर भी देखने को मिला था. लेकिन ये आज अच्छा रिबाउंड है, लगभग 2% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी है आईटी सेक्टर के, और आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहा है आज बाजार के ऊपर पहुंचने में, ऊपर आने में. इसके अलावा कुछ ग्लोबल क्यूज है, जैसे कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अब लगभग राहत की बात यह है कि थोड़े पॉजिटिव संकेत इस तरह के मिल रहे हैं, और थोड़े पुख्ता संकेत मिल रहे हैं. पॉजिटिव संकेत तो लगभग हर हफ्ते मिलते थे और फिर वो नेगेटिव में बदलते थे, लेकिन इस बार शायद पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि अब ये लड़ाई खात्मे की ओर है. लेकिन उससे बड़ी बात, यूएस जो जॉब मार्केट का जो डेटा आया है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है. अब हालांकि सीधे सीधे देखा जाए तो पिछले 4 महीने में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है जो नई नौकरियां बनी है यूएस की मार्केट में, और इस लिहाज से देखा जाए तो वो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन क्योंकि वहां फेड रिजर्व के नए गवर्नर आए हैं, उनका स्टैंड बहुत ही हॉकिश है, और उसके चलते ये जो डेटा है, शायद ये डेटा थोड़ी सी राहत प्रदान करे इस मामले में कि शायद जो फेड रिजर्व है वो उसका जो हॉकिश स्टैंड है उसमें थोड़ी सी ढील बरतें वो, और इसीलिए शायद जो इन्वेस्टर्स है, खासतौर पे जो यूएस के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनका नजरिया मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही माना जाएगा. और अगर अमेरिकी बाजार में कुछ पॉजिटिव नजर आता है तो उसका असर बाकी बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पॉजिटिव ही दिखाई देता है, अगर कोई और बड़ी खबर या कोई और बड़ा कारण ना हो तो.
0: Vishal, I'd like to draw your attention to the broader market here. If you look at the mid-cap and the small-cap segment, you know, we have been seeing this uptick in the overall market for the past few sessions now. But this broader market has not been

0: do a larger understanding of the scenario for the past month or 2 months or 3 months as well, let's also understand that there was a lot of pressure on the market in terms of a lot of negative global cues. The crisis in the energy sector, the oil prices going up and then coming down, then again going up. A lot of confusion as far as investors are concerned, and that also led to a lot of outflow of FII as well from the market. That is something which it takes a little bit of a time for the market to take those positive cues which are coming in right now, absorb them, and pick up the pace. It is picking up the pace in certain sectors, one here, two there, or maybe going a little flat in certain sectors as well, but it will take some time. I'm pretty sure it'll come back. There are positive cues coming in, but yes, they're absorbing it and perhaps realizing investors are very smart, they're the smartest of the lot as far as economic aspect is concerned, so they would not put their money where they don't think they will get some return in the long run.
1: Vishal, you mentioned about the energy crisis, of course, courtesy of the West Asian crisis has happened, but if you look at the power sector here, it has been, it has performed exceptionally well over the past 2-3 months, if you may say, but over the past 10 sessions or 15 sessions, it's been kind of plateauing now, or rather slipping. Even today, if you look at the sector, it plunged 2.4%.
0: Well, that's a simple mathematics out there, Nishit. The point is that when the energy crisis hit, of course, the power sector was pretty much in demand. There was a lot of... it's like a demand and supply gap. That's one. And two, the power sector companies, did not disappoint. They did not flounder when the focus was all on them. And that is why this demand and supply gap, which was there due to energy crisis and all that happening, all eyes on the power sector, as long, let's look at what is it that can be done. And that perhaps was the momentum. Right now, again, we come back to the same situation. The oil prices are coming down. The energy crisis is ebbing away. So, that gives a bit of a elbow room as well. So it might sound very amusing, but this is how it happens, In the stock market, this is how it's going to happen. Of course, that doesn't mean that the fundamentals of a particular sector or a particular company or their performance or their management does not count. It does count. But yes, if there are global factors, sometimes they overshadow the overall situation and the performance as well.
2: Vishal, apne power ke kshetra ki baat ki, aapne IT ke bare mein bataya, aapne ye bhi beech mein bataya ki aisa kahin par bhi agar lagta hai ki khatra hai paise ko, nishit, to kyon koi jayega aur us sector mein, us kshetra mein apne paise lagayega? To niveshakon aur hamare program ke shrotaon ki nazar se aap agar dekhen ise, to aap kya suggest karenge? Aapke hisab se aise kaun se kshetra hain jinka momentum aapko is dauran mein badhta hua nazar aa raha hai?
0: देखिए, मैं तो हमेशा ऐसी बात को कहता हूं कि निवेशकों के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर जो शॉर्ट टर्म असेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा मानना है कि वो शॉर्ट टर्म असेसमेंट हमेशा, अगर हमेशा नहीं तो ज्यादातर समय पे गलत ही साबित होगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं. आप अगर शॉर्ट टर्म मान के भी चलते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रहेगी, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़े दिन और देख लेते हैं, तो वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगी. तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को एसेस करिए. आप ये मत देखिए कि पिछले एक हफ्ते में किसने अच्छा किया या पिछले 15 दिन में किसने अच्छा किया. ऑफ कोर्स पिछले 2 महीने में जब ये पूरी ग्लोबल क्राइसिस रही, तो रेजिलियंस किस सेक्टर का था, रेजिलियंस किस पर्टिकुलर कंपनी का था, वो बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, नंबर एक. नंबर दो, ग्रोथ किस सेक्टर में है. नंबर तीन, क्या केवल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, या ग्रोथ इसलिए भी है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है. तो इस तरह से जो सेक्टर्स को अगर चूज किया जाए, तो हमेशा से जो पिछले लगभग साल 2 साल से जो सेक्टर्स बने हुए हैं और अभी भी वही बने हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ, या फिर स्पेस हुआ, या फिर उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, पावर सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कभी गिरावट दिखाई दे सकती है. आईटी सेक्टर इज ऑलवेज अ ग्रीन सेक्टर. एआई ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की ताकत है और शक्ति है, तो अगर जो झटके बीच बीच में मिलेंगे उसको, तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिए.
1: राइट,
2: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं एशियन बाजार की तरफ. आज एशिया का शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 5.8% बढ़ा. पिछले सत्र में हुई भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने कम कीमत वाले सेमीकंडक्टर शेयरों की आज

0: खरीदारी की। इधर जापान का निकेई 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5% और ताइवान का ताइएक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। मिशाल, अगर हम वैश्विक टेक ट्रेंड की बात करें तो नैसडैक एक महीने में तकरीबन 3% गिरा है, कॉस्पी 13% गिरा है, वहीं जो महीने भर में निफ्टी है वो 3.3% उसमें बढ़त आई है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक ट्रेंड में रिवर्सल है?
1: देखिए, मैं टेक ट्रेंड में रिवर्सल तो इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम कॉस्पी की बात करें या नेस्टेक की बात करें और भारतीय बाजारों की बात करें, एक इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं
0: जी।
1: और जहां गिरावट ज्यादा दर्ज हुई है, वहां अगर आप थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी पे और गहन तरीके से नजर डाल के देखें तो ये भी समझ में आएगा कि वहां जितने पॉजिटिव क्यूज डोमेस्टिकली मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले उन बाजारों को। भारतीय बाजारों को पॉजिटिव क्यूज हमेशा मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्लोबल क्राइसिस थी, जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा था, मध्य पूर्व में जो हो रहा था, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस थी, उसका सीधा और बड़ा असर इन बाजारों और इन देशों में देखने को मिला। हम पर भी असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हम पर नहीं असर पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा, उस लेवल तक नहीं पड़ा। और हमारे जो जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक और बाजार के, मार्केट्स के भी, उनमें इतनी कुव्वत थी कि वो उसको, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। इन बाजारों में और इन देशों में भी है, लेकिन इनकी निर्भरता हमसे कहीं ज्यादा है
0: जी।
1: इस मायने में, क्वांटिटी के मायने में नहीं, लेकिन इस मायने में कि उसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ता है। हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी हमारे पास खपत के जरिया है, हमारे पास सप्लाई का जरिया है, हमारे पास डिमांड को मीट करने का जरिया है, उनके पास उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इसीलिए आईटी सेक्टर और इस तरह के सेक्टर्स में जब ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो उसका सीधा असर पहले वहां देखने को मिलता है, उसके बाद यहां देखने को मिलता है।
2: राइट, एंड इन सम अदर स्टोरीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे सेड दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव $1 trillion एक्सपोर्ट टारगेट्स फॉर द ईयर विद नियरली 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive approach in which every state, district, and industry segment is treated as equally important.
3: Our aim is not small. Our aim is to grow in the current year. We were $863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470. That is how we'll reach a trillion, which is a growth of about 11%.
2: The minister highlighted that the central government is planning to expand the export base beyond the traditional hubs by making every district in the country an export hub. He said that the government is simplifying procedures, reducing compliance burdens, and improving the ease of doing business to support the export ecosystem. Mr. Goyal emphasized the role of Export Promotion Mission in helping businesses with branding overseas, warehouses and exhibitions abroad, and urged exporters to make full use of newly operational and upcoming free trade agreement FTA, including those with Oman, Switzerland, the UAE and the UK. Vishal, talking of, we heard what Piyush Goyal was saying today, you know, and talking of free trade agreement, especially with the European Union, which was touted as the mother of all trade agreements, right? Oman, Switzerland, UAE and the UK now, especially the outreach is, you know, tremendous kind of happening all over, all around the globe. So now with this export target of achieving of $1 trillion, more than that, for the year, with nearly 50% of annual exports already recorded, how does it stack up?
1: Well, I believe, Nishit, this is just the beginning, because, and I'm calling it just the beginning and just the tip of the iceberg, because of the fact, as you pointed out, these FTAs starting with the European Union, Oman, Switzerland, UK, and several other countries as well. And before that, we've done it with other countries also.
2: Yes.
1: And we're negotiating more such bilateral agreements with other nations. Now is the time when, you know, most of these economies and most of the countries

लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूं मैं रोहिणी। जी हाँ दोस्तों, इस गहरी काली रात में सदाबहार गीतों का साथ जो कि बना रहेगा आपके साथ। वो कहते हैं ना, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चरागों का सफर कितना है। ये सफर आप तय कर रहे हैं दोस्तों 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आइए आगाज करें आज के इस प्यारे सफर का, तेरे घर के सामने फिल्म के गीत से। और इस गीत में आवाज दी है रफी साहब ने, लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया ST परमन जी ने।

0: जाना।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, तो और ये रात जो कि महक रही है चांदनी से, और इस प्यारे से समय में ये बेहद प्यारे सदाबहार गीत आप तक पहुंच रहे हैं। ये अगला गीत प्यार का मौसम फिल्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है ST बर्मन जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, और ये अगला अंदाज शागिर्द फिल्म से आप तक पहुंच रहा है। रफ़ी और लता जी की आवाज़ में इस गीत को अल्फाज से सजाया मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि और आज के सफ़र को आगे ना बढ़ाएं। तो फिलहाल मुझे आज के सफ़र को यहीं समेटने की दें इजाज़त, और बड़े ही प्यारे अल्फाज जो कि आपसे साझा करना चाहूँगी, बेशक दिन में भुला दो तुम उजालों के मायने, स्याह रात में तो रहेगा ही इंतज़ार चांद का। जी हाँ, इंतज़ार और ये सफ़र आप तय करते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाती हूँ इस प्यारी सी आवाज़ के साथ, इस प्यारे सी गीत के साथ। मुझे रोहिणी को दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं। India's
2: development assistance. बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को

ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका के डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानरे को 6-1 6-3 से मात की दी। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज़ तुम्हें देखना कैसा होता है।

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 निशिकंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

0: वाकई हवा के साथ साथ और घटा के संग संग चलना ही जिंदगी है। कुछ गाने हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सफर हो या मंजिल, रंगत तभी आती है जब मन खुश हो। अगला गीत फिर से आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

मोहब्बत में कश्मकश ही ऐसी होती है, समझ ही नहीं आता, दिल की बातें जुबा तक आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, समझ नहीं आता कि उन्हें बयां कैसे किया जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कह देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आती है। क्या कहते हैं आप? अब ये भी कोई पूछने की बात है, सफ़र वही जो साथ साथ तय किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

सच में मुंबई की बात ही अलग है। मुंबई का नाम आते ही बहुत सी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। वहाँ की लोकल ट्रेनें, समंदर, सब सब कुछ जहन में फिर से एक बार याद आने लगता है। मुंबई का अपना ही एक रंग है, अपनी ही एक दौड़ है, कहीं पहुँचने की, कुछ पा लेने की, कुछ ख्वाबों को पूरा करने की। फिलहाल हम भी एक दौड़ में शामिल हैं और इस दौड़ को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी कविता फीकी पड़ जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त वह है 12:38 और 42 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में

जब दीवानगी का ऐलान हो ही गया है तो फिर दीवानों को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी हो या फिर मोहब्बत, दोनों को दीवाने ही सबसे ज्यादा समझ पाते हैं। और वैसे भी दिल में जब प्यार का जज्बा होता है तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। इस दीवानेपन को और आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

लौट आना ही सही विकल्प होता है खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए। हम दूसरों को समझते और समझाते हुए अक्सर खुद को समझना भूल जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट BMS इपोक IIN और लॉसिंगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमरीका की जेसिका पेगुल

100.1 MHz पर अब आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

चौदहवीं का चांद से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत बहुत ही सुरीली आवाज़ में, यानी रफ़ी साहब की आवाज़ में। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। फिल्म चौदहवीं का चांद 1960 में प्रदर्शित हुई थी और इसका निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म थी ये। रवि द्वारा निर्मित संगीत को काफ़ी लोकप्रियता मिली और दर्शकों द्वारा इस फिल्म के संगीत को खासा सराहा भी गया। और अब अगला गीत हम सुनते हैं फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

किशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। फिल्म असली नकली 1962 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। देवानंद, साधना, लीला चिटनीस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्टू मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। और अब अगले गीत की बारी, लेकिन अगले गीत को अब तक पहुंचाने से पहले अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गीत रात के जज्बात को और गहरा करता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, अभी के लिए

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म अनाड़ी से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। अगर फिल्म अनाड़ी की बात की जाए तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मोतीलाल ने। इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब। अब जब रात की बात छिड़ी है तो फिर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 1:37 और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने. एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, तो ज़रूरत है उन गीतों को महसूस करने की. तो चलिए फिर सुनते हैं हम अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में.

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कि ओपेरा हाउस फिल्म की हम बात करें तो ये फिल्म आई थी 1961 में और ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अजीत बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने अभिनय किया था। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म बहू बेगम से।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाजें थी आशा जी और रफी साहब की, संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। फिल्म बहू बेगम 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। संगीत रोशन साहब का था और इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया और ये गीत, इस फिल्म के जो गीत हैं वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म तीसरी कसम से।

0: पनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो
0: कन्या उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले।

वक्त हुआ है 1:54 और 22 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, मेरे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू के साथ। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

गीतों का यह सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अभी वक्त है समाचारों का। 2 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस, इपॉक आई आयन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उसने बड़े अदब से पूछा, अगली मुलाकात कहाँ होगी? मैंने कहा, आसमानों में, दो बादलों की टकरार में, भीली माटी की खुशबू में, खिड़की पे बारिश की बूंदों में, मोगरे के फूलों में, अदरक वाली कड़क मीठी चाय से उठते उस धुएं में, रहमान के किसी गाने की धुन में, रुके हुए से ट्रैफिक जैम में, शर्ट के टूटे हुए बटन में, गहरे काले काजल में, पहाड़ों में, बहते झरनों में, कहीं साहिल तो कहीं किनारों में, मौसम की बहारों में हम मिलेंगे ज़रूर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 15 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी कि जज्बातों की रात, एहसासों की रात। और इस प्रोग्राम में हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ कुछ शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आपको पता है, जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो में हवाएं चलने लगी हैं सच में, और टेम्परेचर भी कुछ कम हो गया है। इस गाने का एक एक सुर सीधे दिल में लगता है, और दिल में लगने के साथ सीधे दिल में असर करता है। अगर आप भी इस गाने को सुनकर किसी के ख्यालों में खो गए हैं, किसी की यादों ने आपको घेर लिया है, तो अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

0: शायद कभी कभी।
1: वैसे ये तो सच बात है कि मोहब्बत किस्मत वालों को ही मिलती है, और जब मिलती है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ये मोहब्बत इतनी ही अनमोल है, इतनी ही कीमती है, तो लोग इसे संभाल कर क्यों नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पर रूठ क्यों जाते हैं। खैर, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपका ख्याल रखता है, तो आपको खुदा को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन में तितलियां उड़ी, कुछ जादू सा लगा। सच में इस गाने की खासियत ही यही है, एक जादू सा एहसास से भर देता है ये गाना। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बस यूं ही बैठे हों और अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए और फिर बिना कुछ कहे आपके दिल में समा जाए? आपको पता है फिर कैसा लगेगा? फिर ऐसा लगेगा शायद इस गाने जैसा। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं, हम अपने दुख गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। स्वादिश मिलो एक मेगा हट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42 और 6 सेकंड और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। रात की सुरों को, रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात की दर्द को गीतों से, बातों से समझने की, महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में अभी के लिए।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग

वैसे ये तो सच बात है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता है। वो चाहे हमारे पास हों या हमसे दूर हो, उनकी मौजूदगी हर पल हर सांस में महसूस होती है, बिल्कुल हवा की तरह, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर उसके बिना जी भी नहीं सकते। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम रोज ना जाने कितने अनजान रास्तों से गुजरते हैं, कितने ही चेहरों को देखते हैं, पर कभी कभी बस यूं ही चलते चलते कोई ऐसा मिल जाता है जो अजनबी से सीधे हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाता है, खास इंसान बन जाता है। ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई तैयारी होती है, बस एक मुलाकात होती है और पूरी तकदीर बदल जाती है, जिंदगी की कहानी बदल जाती है। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में आप ही के लिए।

गीतों का ये सुरीला सफर यहीं तक, रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत

0: सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमरीका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशू ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डे से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नावे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार

दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं FM गोल्ड पर और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

यादों की बारात, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे कस्मे वादे फिल्म से, आशा भोंसले और किशोर कुमार और अमित कुमार का गाया हुआ है। शब्द रचना गुलशन बावरा की है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, ये तो हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियों की बहारें आती रहें, लेकिन बहुत बार आप छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। और नाराज आप क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपको मनाएंगे।

दोस्तों, एफएम गोल्ड पर हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत आप गीत सुन रहे हैं, यानी युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

दोस्तों बहुत बार प्यार भी मुसीबत बन जाता है, या नहीं यूं कहें कि अफसाना बन जाता है कोई ना कोई। आपको बता दें कि ये गीत आपने सुना प्यार बना अफसाना फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी, गीत की रचयिता थे अज़ीज़ कैसी और धुन बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में है, शब्द रचना गुलजार की और संगीत आरडी बर्मन का।

दोस्तों, पहले के दौर में जब मोहब्बत की बात हुआ करती थी तो बात सुनकर प्यार करने वाले शर्मा जाया करते थे, और प्यार करने वाले उसका प्यार आंखों से ही पढ़ लिया करते थे।

झुके जो तेरे नैना। कंगन फिल्म से ये गीत आपने सुना, महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का गाया हुआ गीत था अनजान का, और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथ साथ फिल्म से, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाया हुआ है, जावेद अख्तर के बोल हैं और कुलदीप सिंह का संगीत।

सागर फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को रचा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यार का, सागर फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, प्रेम धवन ने गीत को लिखा है और रवि का संगीत।

दोस्तों सच में जो प्यार करने वाले होते हैं वो यही सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं उनका साथ छूट ना जाए। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ। संतोष आनंद का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के कार्यक्रमों के साथ। अगले कार्यक्रम अरुणिमा में 4:11 पर फिर से मुलाकात होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालूतारा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़ंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन

0: की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉन्सगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, बहुत से गाने जब चलते हैं तो साथ साथ गुनगुनाने में भी उनको बहुत मज़ा आता है। आपने ये गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी, SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं खुशबू फिल्म से, गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, गुलजार ने गीत के बोल दिए हैं और संगीत से संवारा है RD बर्मन ने।

दोस्तों, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं रहा, और वैसे भी अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं मंजिलों को पाने के लिए।

दोस्तों, इस गीत में बहुत अच्छी पंक्तियां थी कि बिछड़े दिलों को मिलाते चलो। बहुत बार ऐसा होता है कि

को मिलाते चलो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी में भी आपस में अगर कोई बात हो जाती है तो लोग आपस में बोलना छोड़ देते हैं, फिर कोई ऐसा काम करता है तीसरा बंदा आकर कि उन दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समझदारी से उन दोनों को, दोनों का ही पक्ष लेते हुए समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, बात हो गई तो आया जाई करो, आया गया करो इस बात को। तो यहाँ पर बिछड़े दिलों को मिलाने की बात सही साबित होती है। तो हमारा भी काम यही रहना चाहिए कि अगर किसी की बात में कोई आपस में मन में रंजिश पैदा हो गई है तो हम उनको मिलाने का काम करें, ना कि उनका दिल में जो प्यार पहले था उनमें दूरियां पैदा करें।

0: चले।
1: लेकिन हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे हैं। प्यासा सावन फिल्म से ही आपने गीत सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ, और लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ था ये गीत। आनंद और गुलशन बावरा का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दूसरों अगला गीत सुनवाएंगे लेकिन अंतराल के बाद।

हिमालय की गोद में, इस फिल्म में से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, हर इंसान सपने बुनता है और सपनों को पूरा करने के लिए पूरे दांव-पेंच लगा देता है और फिर उसको लगता है कि अब उसका जीवन बहारों जैसा हो गया है।

आखिरी खत। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ, कैफी आजमी की रचना थी और खयाम का संगीत। दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है गीतों के साथ।

दो बदन। इस फिल्म से आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायूं की रचना थी और संगीत रवि का। ठंडी हवाओं में दोस्तों अगर यूं ही कोई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना।

बेटी बेटे इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। दोस्तों अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ सुजाता फिल्म से, जो बचपन की याद दिलाता है। बचपन दोस्तों वाकई में ही गुजर जाता है वो लम्हे, और बड़े होने तक हमें वो बातें याद आती रहती हैं।

0: कभी कभी।
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ आया सामन झूम के इस फिल्म से ये गीत।

जाने का तो दोस्तों किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा इस कार्यक्रम को खत्म करके। और इसके साथ ही अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए।

0: हैं। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम अभी चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन और अपडेट करने के लिए पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितम्बर के बीच दर्ज की जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। सरकार ने बैट बीएमएस ईपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और गूगल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से हॉकर 800A विमान की नीलामी की है। विमान को 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस विमान को पिछले वर्ष 7 मार्च को तलाशी अभियान में जब्त किया गया था। ईडी की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान को जब्त किया था। जांच में 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना मिली है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakhs passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Mr. Modi will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said, Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Tista River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to

दोस्तों, जब भी मैं ये प्रार्थना सुनती हूँ तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी वो कविता याद आ जाती है, आत्मत्राण, जिसमें कवि ने कहा है, विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो कितनी अच्छी कविता की पंक्तियां हैं और इस गीत में भी, इस रचना में भी हमें सुनने को मिलती हैं कि हमें शक्ति देना दाता। इंसान तो दोस्तों काम करता ही रहता है, लेकिन उस काम में हिम्मत वो दे दे तो शक्ति बढ़ जाती है, यानी काम करने में मन दोगुना हो जाता है।

दोस्तों सच बात है, ये तो इंसान के बनाए हुए नियम है। भगवान तो हमें विवेक से भेजते हैं, हमारी बुद्धि यहाँ आकर इस दुनिया में कैसी हो जाती है ये हम पर निर्भर करता है, और हमारी बुद्धि सही रहनी चाहिए।

इंसान अपने व्यवहार से ही अपने आप को बता देता है कि वह कैसा है, और उसके बातचीत करने का ढंग या हाव भाव हम पर कैसा असर छोड़ते हैं, ये सब पता चल जाता है।

दोस्तों, हम भी तो यही चाहते हैं कि आराधना सबकी सफल होनी चाहिए। आराधना फिल्म से ये गीत आपने सुना, सचिन देव बर्मन का गाया हुआ था। आनंद बख्शी ने गीत को रचा था और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। दोस्तों कहते हैं

दोस्तों, इस गीत की धुन सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा गीत है। लेकिन इस गीत को सुनवाने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि हम जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, आसपास का वातावरण और वहां की हवाओं से हम वाकिफ हो जाते हैं और हमारा